0: अरे संगलन जी दिना श्याम ने तेरंग लिंचन ना गोजी यो नुग नंग तुन तंग पुते छोरहु न शांग छिन जी चोंग छु अंग आप जा जा निर्स्टिल चोंग छुर जे जी छोरती ली तुन लार गेंदल तोंग जी इंबा शी पी नंग तुन दव शे जे यन निचर छोरहु न शांग छिन जगसल दो दाम जु जी छोरहु न शांग छिन तंग ये जान जग पु तंग न्याम द तंग जग जी निर्स्टिल चोंग छुर जे जर निचल शे पी ली तुन ला ngowi yarang jin je gendil tong gi pi kur je da ju ro huan zhen xi ni zhong chu ren bi zan zi ge li yi le cha deng xia xi ni ban dun fu le gang le xi de chong men de xiang qin yong je xiang di er ni ji le song zhi le shu di xia xi cha chi zhen ji le ru ram xi ni zhong si meng chu je zhe si le ji de ang yi pu ge bi de ka te ge ge na dun ta chu xia ji zhe le da ju nong deng zi ge ji ni chi le deng ye bu deng zhen ji jin chong yi da deng yi 从我们的乡亲用这恰不空的，蒙起查新中六八等，中初人比三次节谈你起哇，蒙初节你起了人口中十几的一百几节，这个是成为中初啊阿不家咱们当的，用顿了这不一等，等等蒙初节下不起一点的，他们个外面的这边坑巴索，大有节腾空啊外些的，你是起了查不动三次这个的，中初人比三次个拉等的。
1: 你是进了中村的阶级，跟着动物，村地里头跟进回来背着了。查进准备中村的田埠打的，中村人比二等里比十分里里三分些把等了。中村人你进了松镇的下不些挖过这个西的，你是进了你所接人间跟客家人是个马东的，门不是卡土的泥巴等了。你是进了县城的县次用为中村，县头拿出出些不着跟着动物了，家父就是些给些。
0: 我们是给担忧个，但是呢，你是进了中村的阶级，跟着了东家的，当自己啊，人们接种了，你吃着，忙错了，想得个些为，能顿感情的子女，同学的金属灯，打开了些不些，金属的嘴巴灯，第提成的灯呢，叔叔是你和这个日子，你是进了中村镇家，使用的哈东特别的，上帝灯照开了忙错节，这个是过于一日层次，还得进土了东家一把灯油。